0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराईटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उनका संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: समयमै आफ्नो घर परिवारको जन्म मृत्यु विवाह र बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना आफ्नो वाडा कार्यालयमा रहेका पञ्जीका अधिकारी समक्ष दर्ता गरी कानूनी मान्यता प्राप्त गरौं। यसले तपाईँ हामी सबैलाई कानूनी रूपमा काम गर्न वा गराउन सजिलो हुन्छ।
2: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
3: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौ।
4: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
5: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
4: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
5: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
2: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 98584-89213 इमेल ocmctikapur@gmail.com।
6: घर त जेनतेन लगाइयो, अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला? काठ पनि सुन जस्तो महँगो, के गर्ने के नगर्ने?
7: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ? काठभन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
6: ए हो त, कहाँ पाइने रहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका?
7: कहाँ हुनु भाइ, टीकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
6: अब त म ढुक्क।
8: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
7: मोबाइल नम्बर 98-48-51-43-26 जमरापारी टीकापुर कैलाली।

0: ईजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।
1: के तपाईलाई थाहा छ,
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर, मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र?
2: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
1: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: अहँ, हुँदैन। टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली।
3: लक्की ट्रेडर्स टीकापुरमा एनटीसी र एनसीएलको सिम कार्ड, ई सिम पाइनुका साथै फोटोकपी, लिमिनेसन, प्रिन्ट, ब्याट्री र ब्यालेन्स ट्रान्सफर पनि गरिन्छ।
0: हराएको मोबाइल एमडीएस प्रणालीद्वारा दर्ता र मोबाइलका सम्पूर्ण पार पूर्जा पाइनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ। साथै 5 मिनटमा पासपोर्ट साइजको फोटो निकालिन्छ। मोबाइलमा फोल्डर हाल्ने र बुफर पनि उपलब्ध गराइन्छ।
3: लक्की ट्रेडर्स सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम नजिकै नेपाल टेलिकम जाने बाटोमा, सञ्चालक खगेन्द्र चौधरी, सम्पर्क नम्बर 9868551000।
4: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमा जाइस् त?
5: मै नै जाइँ, उहाँ आफ्नो अनुहार बिगारके घर से बाहर नै निकर्छु।
4: उहे मारे त तुहिन उहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, ई पत्रिकामे लिखल बा मनिष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था। वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादो, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
6: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

0: एल्विस एल्विरा टेरसमा डिजाइन डिजाइनका साडी, सुट, कुर्ती, पलाजा तथा थानका कपडाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छन्। एकचोटि सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला।
1: एल्विस एल्विरा टेरस, सिद्धार्थ चोक गालप सुपर मार्केट अगाडि टिकापुर कैलाली, संचालक सुजिता श्रेष्ठ, सम्पर्क नम्बर 9811 67 38।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटा का आज था, का कना हो बाबा के वस्त बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बर थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर अबदेखि टिकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ। ससानो कुरामा टना भुने बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने कुलतमा लाग्ने छटपटी हुने मुटु धेरै धुकधुक हुने जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असोज 17 गते 24 गते र 31 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला। टिकापुर अस्पताल टिकापुर कैलाली।
4: हेलो बहिनी कता हो तिमीलाई थाहा छ कि नै सीजी कम्पनीको वाईवाई जिंक 15 रुपियाँमा एक पेटी रूपान 560 मा उपहार सहित एक कचौरा पनि पाइन्छ तिमीले कतिमा किन्यौ
5: मैले त एक पेटी चाउचाउ रु 600 मा किने
4: 600 रुपियाँ किन हाल्नु पर्यो 560 मा त ब्लक नम्बर 14 मा रहेको हरिलाल किराना पसलमा रु 15 वाला चाउचाउ पाइन्छ त्यो पनि सीजी कम्पनीको गुणस्तरीय चाउचाउ र त्यस्तै रु 25 को क्लासिक चाउचाउ र 35 को चाउचाउ रु 2500 रुपियाँमा आउँदैछ नि त्यो पनि हरिलाल किराना पसलमै छ फेरि 500-600 रुपियाँ वाईवाईमै किन हाल्ने 460 मा मामा चाउचाउ हरिलाल किराना पसलमै पाइन्छ त्यो पनि वाईवाई सीजी कम्पनीको र रिचार्ज कार्ड पनि पाइन्छ भुलेर पनि अरू ठाउँमा नजानु है होलसेल र खुद्राको दरमा बिक्री गरिनुका साथै क्वान्टिटी अनुसार दर मिलाएर बिक्री गरिन्छ आधिकारिक विक्रेता
5: हरिलाल किराना पसल ब्लक नम्बर 14 पार्क रोड टिकापुर कैलाली सञ्चालक प्रदीप बहादुर विष्ट सम्पर्क नम्बर 98 48 40 22 41

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान 9 बजे के खोज खबर में यहां उक्रहिन स्वागत बा। खोज खबर से छपिलाल चौधरी के राम राम। अब अपनी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो और नेपाली पात्रो में फिर सुन्ती बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। जानकी के खेल मैदान में शौचालय निर्माण हुई पाछ खिलाड़ी उक्रहिन सहज हुईती। शेर सदस्य सहुलियत सेवा दिए नवजीवन से साथी अस्पताल संग समझौता। टीकापुर में शिक्षक महासंघ के घोषणा कार्यक्रम। यह वर्ष शिक्षक के सेवा सुविधा वृद्धि करना कार्यवाहक नगर प्रमुख के आश्वासन। चोरी तस्करी हो छाड़ा पशु चौपाया वन संरक्षण के लग मुख्य चुनौती रहल। भगरहिया वन संरक्षण समिति के अध्यक्ष सिंहराज बुढ़ा मगर के कहाई। ओ टीकापुर डांस आइकन के उपाधि रश्मि साउध। सुवर्णपुर खेल मैदान में शौचालय बनल पाछ खिलाड़ी ओ उहाँ के स्थानीय नागरिक सहज हुईना हुईलबा। खेलकूद के समय में खिलाड़ी हुक रहे शौच कर सहज हुईना हुईलबा कलसे शौचालय नई हुई बेर हुईना फोहर फेक कम हुईना उहाँ के स्थानीय नागरिक हुक्र खुशी हुईलबाट। सुवर्णपुर स्थित खेल मैदान में सार्वजनिक शौचालय निर्माण हुईल पाछ खेलकूद के समय में खिलाड़ी हुक रहे सहज हुईना हुईलबा। जानकी गांवपालिका वड़ा नंबर 3 के सुवर्णपुर खेल मैदान में शौचालय नहीं खेलकूद के समय में बनवा में झारा कर जैना बाध्यता रह तब हुन आब शौचालय निर्माण हुई पाछ स्थान नागरिक सजिलो हुईना हुईलबा। शौचालय बनल पाछ वहां के नागरिक फे खुशी हुईलबाट। ई खेल मैदान में जानकी गांवपालिका स्तरीय खेलकूद हुईना के साथ और समय में फे खेलकूद हुईना करत। खेलकूद हुई बेर खिलाड़ी बनो में जाकर झारा कर जाय परना बाध्यता रह कलसे आब शौचालय निर्माण से सहज हुईना हुईल बतैठ जानकी गांवपालिका वड़ा नंबर 3 के ढोढ़िया कठरिया। बरघर बालकृष्ण चौधरी फे शौचालय नई बेर खेलकूद ख्याल ऐना बाल बालिका है ढेर समस्या रह तर आब सजिलो हुईना वहां बतैठ। ई ठाव में शौचालय निर्माण हुईना मजा बाट हो काजेकी यहाँ खेलकूद मैदान बा। खेलकूद मैदान में ढेर बाल बालिका हुक्र खेल ख्याल ऐठ आब हुक्रहीन सहजता संग ई शौचालय बाल बालिका सुरक्षित हुईना बतैठ। भिरकुटी माध्यमिक विद्यालय सुवर्णपुर के विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष सरिता शाह। बरघर भीमबहादुर चौधरी फे शौचालय निर्माण से यहाँ ख्याल उया विद्यार्थी मजा हुईना बतैठ। सार्वजनिक शौचालय बनल पाछ खेल मैदान में खेल ख्याल उया खिलाड़ी हुक्रहीन के नाही और आवत जावत करना नागरिक व स्थानीय फे मजा हुईना हुईलबा। शौचालय बनल पाछ खेलकूद के समय में हुईना फोहर फे कम हुईना हुईलबा। अस्तहे के सार्वजनिक शौचालय बनना मजा हुईलक स्थानीय फूलकुमारी चौधरी बतैठ। सुवर्णपुर में बनल शौचालय में महिला पुरुष व पांग कैक 3 ठो शौचालय ओ एक ठो काउंटर कोठा फिर निर्माण कई गिलबा। जानकी गांवपालिका के वड़ा नंबर 3 व 8 में सार्वजनिक शौचालय निर्माण करलबा। शौचालय खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना अंतर्गत 1,56,79,756 रूपया के लागत में निर्माण हुई लख हो। नवजीवन सहकारी संस्था आपन शेयर सदस्य हुकन के सहूलियत में स्वास्थ्य सेवा देह ढेरनक निजी अस्पताल संग समझौता करल बा। टीकापुर क्षेत्र के सदस्य हुकन के लाग बुधवार टीकापुर स्थित साथी अस्पताल में 5 वर्ष के लाग समझौता करल बा। समझौता अनुसार नवजीवन सहकारी के शेयर सदस्य वो वाकर परिवार अस्पताल के सेवा में छूट सुविधा पौया बाट। नवजीवन सहकारी संस्था टीकापुर शाखा के शाखा प्रबंधक टेक बहादुर बोगटी नवजीवन सहकारी के शेयर प्रमाण पत्र व सदस्य कार्ड बोक का उपचार करैल से सदस्य हुक्रहीन 10-15% छूट देना जानकारी देहलबाट। समझौता पत्र में हस्ताक्षर करती नवजीवन सहकारी संस्था के अध्यक्ष गोपाल राज पाठक टीकापुर में साथी अस्पताल जस्ता बांसगढ़ी के लाख कौशल्या अस्पताल सुखड़ में सीएस अस्पताल व धनगढ़ी में निसर्ग अस्पताल संग समझौता कई गिलक बतैलबाट। अस्तहे साथी अस्पताल के अध्यक्ष तपेन्द्र विष्ट सस्तो में गुणस्तरीय सेवा देती रहल साथी अस्पताल संघ नवजीवन सहकारी सहकारी करल में स्वागत करती ई सहकार्य से दुई संस्था फायदा पुग्ना बतैल बाट समझौता कार्यक्रम में नवजीवन सहकारी के संचालक खेमराज पांडे महाप्रबंधक प्रदीपराज जोशीफे उपस्थित रह। खोज खबर में टीकापुर में शिक्षक महासंघ के घोषणा लगायत के खबर पलिबा सुनती रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: यो खाने मन त कहाँ छ र तर के गर्नु जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ फेरि खानै पर्छ।
2: तपाईँ एक्लो कहाँ छ श्रेया? त्यति माया गर्ने आमा छिन्, दिदी छिन्, भाइ छ, बरु एक्लो त म छु। म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे, कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ, बाँच्नुपर्छ अनि को संसारको मजा लिन पाइन्छ।
1: हो र, तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र त्यसो भन्छ?
2: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त? जब म निस्केँ काम गर्न थालेँ अनि पो कमाइ छ त? यो कमाइ पनि मेरो लागि होइन, हिजो म कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो, अब घरजम गर्नु छ, श्रीमती छोराछोरी होलान् उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म।
1: ओहो, तैँले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकेछस् त यार। अब म पनि कुलत छोड्छु, आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु, भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु।
3: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
4: टीकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
5: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
4: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
0: नेपाल शिक्षक महासंघ टीकापुर नगर कार्य समिति के पूर्ण घोषणा कार्यक्रम हिलबा। नेपाल शिक्षक महासंघ टीकापुर नगर कार्य समिति के निवर्तमान अध्यक्ष रघुनाथ उपाध्याय के अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम में बोलती टीकापुर नगरपालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख रामबहादुर नगरजी शिक्षक से उत्पादन करल व्यक्ति देश के जो शक्ति हुई लकमार शिक्षक के मार्ग संबोधन हुई पर्ना बटैल बाट ये आग शिक्षक के मार्ग संबोधन नहीं हुई लसेफे आपन कार्यकाल में सेवा सुविधा बढ़ाइना प्रतिबद्धता फे व्यक्त करल बाट। नगर अध्यक्ष धर्मराज शर्मा आपन कंधे में जिम्मेवारी ऐलक मार निवर्तमान कार्य समिति शिक्षक सकुहन संघ सहकारी कई का आघ बहरना बटैती शिक्षक के माग वो अधिकार के लाख सद अग्रसर रहना बटैल बाट। महासंघ के निवर्तमान नगर अध्यक्ष रघुनाथ उपाध्याय शैक्षिक विकास के लाख सक्कु जे मिलके काम कर पर्ना आवश्यकता रहल बटैती शिक्षक पेशागत सुरक्षा चाहलक ओ अपनहुक शैक्षिक गुणस्तर सुधार के लाख जिम्मेवार रहल बटैल बाट। नेपाल शिक्षक महासंघ कैलाली के अध्यक्ष गणेश ओझा शिक्षक के सेवा सुविधा बढ़ाई ध्यान देह पर्ना बटैल बाट। कार्यक्रम में टीकापुर नगरपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ममता बास्तोला शिक्षा अधिकृत नरेश अवस्थी शिक्षा समिति सदस्य जोगी रावल लगायत बोलल भद्र रावल से स्वागत करगिल कार्यक्रम संचालन निवर्तमान नगर सचिव राजाराम ढकाल करल संघ के नगर अध्यक्ष में धर्मराज शर्मा सह अध्यक्ष में हेमराज भट्ट उपाध्यक्ष में दीपक राज जोशी सचिव यशोदा तिमिल सिन्हा सह सचिव हृदयराज रेग्मी सहसचिव महिला म सुमन खड्का ई आघजो चयन हो सकल के सदस्य म लक्ष्मी विष्ट अमित कुमार चौधरी पूर्ण बिक रामबहादुर चौधरी अशोक बिक नन्दा खत्री जित बहादुर दंगौरा कल्पना खड्का आशा कुमारी भट्ट व रतन बहादुर परियार चयन हुईलबाट। टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित भगरहिया वन संरक्षण समिति भगरहिया वन संरक्षण के लाख सरोकारवाला बलैना योजना बनाइल बाट। जंगली जनावर रात के समय में गांव में पैटक बाली नाली व घरपालुआ जनावर खाई लागल बा छ वहां हुकर टीकापुर नगरपालिका गोहरना योजना बनाइल बाट। विशेष कई का रात के जंगली जनावर हुकर गांव में पैटके पशु चौपाया व बाली नाली क्षति पुगाई लागल पा छ या रोकथाम के लाग नगर पालिका तार जाली के माग करना योजना बनायल भगरैया वन संरक्षण समिति के अध्यक्ष सिंहराज बुढ़ा मगर जानकारी दिल बाट। अध्यक्ष बुढ़ा मगर के अनुसार एक उहर वनो मसे आकर जंगली जनावर नुकसान करना करल वो और उहर चोरी तस्करी व छाड़ा छोड़ गैलक पशु चौपाया के कारण जंगल जोगाई फिर चुनौती रहती रहल बटैल बाट। 111 बीघा 6 कट्ठा 17 धूर में फैलल भगरैया सामुदायिक वन में 8 गांव के 800 उपभोक्ता बाट। वन पैदावार से हुईलक आमदानी के 25% रकम टीकापुर नगर पालिका देह पर्ना हो 25% रकम वन संरक्षण विकास के ला खर्च कर पर्ना प्रावधान रहल बा। अस्ते ही कही कर और सामुदायिक वन में फे जंगली जनावर हुकरा कर स्थानीय किसान हुकन के लगाए बाली नाली खैना के साथ बघुआ व चितुआ से घरपालुआ जनावर खा देना करल बा। याघ पटक पटक टीकापुर क्षेत्र में जंगली हाथी से फे नागरिक हुकरहिन दुख देती रहल बा। हाथी एक पटक गांव में पैठ के किसान से लगेलक बाली नाली तथा केरा में क्षति पुगल बा। अस्ते हैं टीकापुर के गौशाला व यहाँ के स्थानीय सामुदायिक वन मफे बोट बिरुवा टूर के क्षति करल स्थानीय सामुदायिक वन हुकर बटैल बाट। खोटेना भुराखानी सामुदायिक वन के अध्यक्ष भूपेन्द्र साउत बतैथ। खोज खबर में आकु खबर पलिबा सुनती रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
6: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
7: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
6: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
7: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए।
8: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठा तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
9: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9046774417।
10: पढ़ाई छुट्यो साथी छुटे सबै छु।

बचपन के प्रतियोगिता में रश्मि साउत, मेरियल छेत्री, स्मारिका रेग्मी, अदिति रावल, रेजिना चौधरी, विभूति साई, सिद्धि बस्नेत, सोनाली साउत, जेसिका साउत, तृप्ति विष्ट, ईशिका साउत, दीपिका बिक, दिव्या भंडारी, मीनाक्षी ठकुल्ला ओ मानवी साउद लगायत 15 जना छानक प्रतिस्पर्धा करल। प्रतियोगिता में प्रथम चरण में 23 टीम के प्रतिस्पर्धा से छानगिलक, दूसरा चरण के 18 टीम मध्य से अंतिम प्रतिस्पर्धा के लाख 15 जना छानगिल। टीकापुर डांस आइकन सीजन 1 के टीकापुर नगर पालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ममता बास्टोला समापन करल रह। सीजन 1 में प्रथम हुई यह 50,000, दूसरो हुई यह 25,000, तेसरा हुई यह 10,000 और चौथो 5,000 रूपया पुरस्कार प्रदान कई गिलबा। कार्यक्रम संचालन भरत भंडारी करल रह। यह समाचार संग खोज खबर ओराइल। अंतिम में जैती जैती खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक एक फेरा फिर से। जानकी के खेल मैदान में शौचालय निर्माण हुई पाछ खिलाड़ी उपहीन सहज हुईती, शेर सदस्य सहूलियत सेवा देह, नवजीवन से साथी अस्पताल संग समझौता। टीकापुर में शिक्षक महासंघ के पूर्ण घोषणा कार्यक्रम, यह वर्ष शिक्षक के सेवा सुविधा वृद्धि करना कार्यवाहक नगर प्रमुख के आश्वासन। चोरी तस्करी और छाड़ा पशु चौपाया वन संरक्षण के लाग मुख्य चुनौती रहल, भगरिया वन संरक्षण समिति के अध्यक्ष सिंहराज बुढ़ा मगर के कहाई। ओ टीकापुर डांस आइकन के उपाधि रश्मि साउद अब खोज खबर रह। प्राविधिक मित्र धन्यवाद देती। अब खोज खबर से मई छपीलाल चौधरी विदा हुई। सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM सुनती रवि। राम राम।

0: अरेला सुन चाँदी पसलमा छड्की तिलहरी माइली तिलहरी रानी हार हार मंगलसूत्र चपकी पेन्डल बाला औठी चन्द्रमा काँटा नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइनका गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपथ मूल्यमा बनाइन्छन्। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
1: अरेला सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक टिकापुर एलएन मेडिकल अगाडि संचालक खुमरा सुनार। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9810625347।

0: का पिए रही था कभी पेंसिल रही था कबू झोले फटाका आज का कना हो बाबा के ओष्ट पाटिन गटिलो ठाव से झोला अनला से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरस गुर झोला अनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी एक आनल झोला दस कटरस बाटिन ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के

0: जागरूक नागरिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको नवौं वार्षिक साधारण सभा हुने सम्बन्धी सूचना। आउँदै गरेको बड़ा दशैं तथा शुभ दीपावली नेपाल सम्वत एवं छठ पर्वको अवसरमा हामी हाम्रा सम्पूर्ण शेरधनी शुभचिन्तक पत्रकार समाजसेवी एवं देश विदेशमा रहनुहुने आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनी लगायत सम्पूर्णमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै मिति 2083 साल कार्तिक 9 गते सोमबारका दिन टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघको सभाहालमा हुन गइरहेको जागरूक नागरिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको नवौं वार्षिक साधारण सभामा सम्पूर्ण शेरधनी महानुभावहरूलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि सादर आमन्त्रण गर्दछौ। साधारण सभा हुने स्थान टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघको सभाहालमा समय बिहान 10 बजेदेखि। जागरूक नागरिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार टीकापुर कैलाली। थप जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-641 र 98-432-86-713।
1: बाबु ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
2: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
1: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
2: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
3: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98-600-71-024 ओ 98-046-77-417।
4: ए सन्तेकी आमा, पर कान्छा खालाको ब्याको न्यू त आएको छ, कसो हो त जाने विचार छ कि नै त?
5: आफ्ना कान्छा भाइको बे नगइकन पनि भएन, जाउँ भने भयाको मंगलसूत्र पनि भाँची गयो।
4: यतिका लागि त सामुएल जोलस बनेको हैन, बरु अहिलेै जाउँ, एक दुई दिनमा त फ्याट्टै बनाइहाल्ला छन् त्यहाँ।
5: आज त सन्त्याका बाले मनकै कुरो हर्यो, ठोट त बाइ जाउँ।
6: सामुएल ज्वेलर्स सुनचारीका सम्पूर्ण डिजाइनका गरगहना बनाउनुका साथै सुनचारी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। प्रोप्राइटर तिहारी सिंह सुनार, सम्पर्क नम्बर 98-68-44-1208 98-486-39-261।
7: पढाई छुट्यो साथी छुटे सबै।

0: विषयलाई अन्धकार हामीले नबनाऊ।
1: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

सुरक्षित जीवन जीना जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाइफ।

0: संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो।
1: विगत 35 वर्षदेखिको सुमधुर साथ यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला। यति कार्पेट, कार्पेटको शहनशाह।
2: छिच्छी फे चर्पी भर्गिल का करना हो का?
3: चर्पी भर्लो से फे का चिन्ता? आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाईमा फोन गरी आब्बा का सरसफाई कै दिही।
2: फोन नम्बर कटरा हो त
3: ली डायल करी 97-620-20-300।
2: हेलो, आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई हो? महिन राजापुर बजारमा ट्याङ्की सफाई गर्न बा।
3: आफ्नो कन्ठे टिकापुर, जानकी, जोशीपुर, भजनी, सत्ती, राजापुर, गेरुवा ओ लम्की मन सेफ्टी ट्याङ्की, गोबर ग्यास ओ रिङवाला टोयलेट सरसफाई कर परिकलसे आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवा हान सम्झवे। संचालक शेरबहादुर थारू। सम्पर्क नम्बर 97-620-20-300 हो 98-656-92-026।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाए वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी ही जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: आरती ब्यूटी एंड कस्मेटिक मा सौंदर्य र श्रृंगार को लागी विभिन्न ब्रांड का कस्मेटिक सामग्री पाइनु का साथ है थारू गरगहना पाइन्छ र ब्यूटी पार्लर को सुविधा समेत रहेको जानकारी गराइन्छ
5: संचालक आरती चौधरी संपर्क नंबर 9864470483
6: ए सन्तेकी आमा पर कान्छाशाला को ब्याको न्यूज आएको छ कसो त जाने विचार छ कि नै छ
7: आफ्ना कान्छा भाइको बे नगइजन पनि भएन जाउँ भने भयाको मंगलसूत्र बन माथि गयो
6: यो टिका लागि त सामुएल जोलस बनेको हैन बरु अहिलेै जाउँ एक दुई दिनमा त फ्याट्टै बनाइएला छन् त्यहाँ
7: आज त सन्तेका बाले मनकै कुरो हर्यो ठोट त बाइ जाउँ
8: सामुएल ज्वेलर्स सुनचादीका सम्पूर्ण डिजाइनका गरगहना बनाउनुका साथै सुनचादी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ प्रोप्राइटर त्यहारी सुनार सम्पर्क नम्बर 9868441208 9846349261
9: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: कप्तानका कपडाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छन्। एकचोटि सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला।
1: एल्भिस एल्भिरा ट्रेडर्स सिद्धार्थ चोक गालप सुपर मार्केट अगाडि टिकापुर कैलाली संचालक सुजिता श्रेष्ठ सम्पर्क नम्बर 9811367।

0: बुका पिए रही था कबू पेंसिल ले रही था कबू झोले फटाका आज का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला आन लसे तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: कामदार आवश्यकता सम्बन्धी सूचना
4: काठमाडौँ स्थित घरेलु कामदार का लागि एकजना पुरुष र एकजना महिला तथा सिन्धुपाल्चोक का लागि एकजना कामदार तत्काल आवश्यक परेको हुँदा इच्छुक तथा योग्य व्यक्तिहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
3: कार्यस्थल काठमाडौँ तथा सिन्धुपाल्चोक आवश्यक संख्या पुरुष एकजना महिला एकजना तथा अन्य एकजना सम्पर्क फोन नम्बर 98541-00725 इच्छुक व्यक्तिहरूले समयमै सम्पर्क गर्नुहोला।

0: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालयको अनुरोध।
1: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वाडावासी दादु भैया दिदी बहिनी हुक्रे सड़क के किनारमै पशु चौपाया नै बाँधेबी सड़क किनारमै मल वस्तु नै कुरा देबी साथै सड़क किनारमा पशु चौपाया बाँधके ढुंगा बालुवा गिट्टी मल कुराके दुर्घटना हुइले से एकर जिम्मेवारी स्वयं व्यक्ति हुक्रा लेह पर्न बा।
0: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वाडा कार्यालय लाइकपुर
2: अरेला सुन चाँदी पसलमा छड्की तिलहरी माइली तिलहरी रानी हार हार मंगलसूत्र चपकी पेन्डल बाला औठी चन्द्रमा काँटा नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइनका गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपथ मूल्यमा बनाइन्छन्। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
0: अरेला सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक टिकापुर एलएन मेडिकल अगाडि सञ्चालक खुमरा सुनार सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9810625347। बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
3: मैं नहीं जाइ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब ही जाए।
1: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

0: छिछी फे चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फे का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटरा हो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: कन्थे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लम्की मन सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हाना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 ओ 98 6 56 92 026
2: एल्विस एल्विरा टेरस में डिजाइन डिजाइन का साड़ी सूट कुर्ती पलाजा तथान का कपड़ा सुपथ मूल्य में पाइन्छन् एक चोटी सेवा को मौका अवश्य दिनुहोला
3: एल्विस एल्विरा टेरस सिद्धार्थ चोक गालप सुपरमार्केट अगाड़ी टीकापुर कैलाली संचालक सुजिता श्रेष्ठ संपर्क नंबर 98 11 67 38 87

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके सन्झेक 5 बजे ठारू भाषा खोज खबरमा अपनौकन स्वागत बा। खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम। अपनौकरा अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संग अनलाइन म www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो और नेपाली पात्रो मफे सुन्टिरहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से सहकारीमा बजट ठुप्रागिल तर लगानी निहो। कैलाशेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के आज संघर्ष समिति के भेला। हाली निकास देपना उपभोक्ता के माग। सेतीमा 3-7-8 से सीटी स्कैन बन्द समस्यामा बेरमेन। ओ कैलालीमा विद्यालयमा जातीय विभेद कलक आरोपमा 3 जना शिक्षक पक्राउ। आप खोज खबर विस्तारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पाछ आप सहकारी हुकन मफे पैसा थुप्र लागल बा। कैलालीके कोष भारे सहकारी हुकनके भदौ महिनाके वित्तीय विवरण ह्याराबेर असिन देखगिलक हो। पाँच थो सहकारी संस्थाकनके अवस्था ह्याराबेर भारे थेसे छुट्टीसम्म ओ सहर थेसे गाउँसम्मके सक्कु सहकारीमा तरलता बढल बा। उद्यम व्यवसायमा लगानी हुइपना पैसा बैंकमा थुप्रागिल पाछ आर्थिक गतिविधि कमजोर हुइना रोजगारी खुम्चना वित्तीय संस्था बचतकर्ता के बचत में ब्याज दिए निषेकना अवस्थायल बा। बचतकर्ता देना ब्याज दर 2% मन छरल बा। लम्की में प्रधान कार्यालय रहलक यह क्षेत्र के सकुन से भारे किसान बहुद्देश्य सहकारी संस्था के कुल बजट 5 अरब 63 करोड़ 32 लाख रूपया रहलक मन तरलता 1 अरब 75 करोड़ 69 लाख 31.19% रहल बा। धनगढ़ीमा प्रधान कार्यालय हुइलक नवजीवन सहकारी संस्था के कुल बजट 5 अरब 53 करोड़ 90 रूपया रहलक मन तरलता 2 अरब 13 करोड़ 96 लाख रहल बा। धनगढ़ीमा प्रधान कार्यालय रहलक और हिमशिखर सहकारी संस्था के 69 करोड़ 45 लाख कुल बचत रहलक म तरलता 6 करोड़ 22 लाख 22% रहल बा। और सहकारी के तुलना में हिमशिखर के लगानी मजा रहल बा। टीकापुर नगरपालिका साथ सत्ती स्थित ग्रामीण क्षेत्र के सहकारी सामुदायिक सहकारी संस्था के कुल बजट 19 करोड़ 35 लाख रहलक मन तरलता 6 करोड़ 22 लाख प्रतिशत के हिसाब लेकन 32.16% रहल बा। टीकापुर में कार्यालय रहलक जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था के कुल बजट 8 करोड़ 53 लाख रहलक म तरलता 2 करोड़ 78 लाख प्रतिशत के हिसाब ले 32.59% रहल बा। यी तथ्यांक ह्यारबेर सक्कु उहर के सहकारी मन तरलता 30% से ऊपर पुगल बा। संस्था संचालक सहस्ता के लागि 15% तरलता आवश्यक रहल सेफे यी सक्कुन से धीर पैसा थुप्रबेर सहकारी हुकन के नाफा खुम्चना अवस्थामा पुगल बा। नवजीवन सहकारी संस्था के महाप्रबंधक दीपक राज जोशी सहकारी बहुद्देश्य सोच अनुसार अन्य क्षेत्र में लगानी कर फे निषेकलको बचत हन कर्जा में परिणत कर निषेकलक बटुलबाट। किसान बहुद्देश्य सहकारी संस्था के नीति अनुपालन विभाग प्रमुख तथा सूचना अधिकारी दीपक राज ढुंगाना सहकारी में कलहक निहोकन आब विकास बैंक व वाणिज्य बैंक के लगानी के अवस्थाफे वस्तह रहलक बटुलबाट। वहां ढुंगाना के अनुसार नियामक निकाय से नीतिगत रूप में कड़ाई हुईलक कर्जा सूचना केन्द्र में जोर गिलक उसे डिफल्टर हन लगानी रोक गिलक देश में अपना सक्रिय होकर काम करना जनशक्ति कम हुईलक को विदेशी ऐलक रेमिटेंस खर्च कन परिवार के सदस्य बैठलक उहर सहकारी के पैसा लगानी हुई निषेकलक बटुलबाट। सामुदायिक सहकारी संस्था शक्ति के प्रबंधक दीपक कुमार वैद्य और वर्ष के तुलना में लगानी मजा हुई तिरलक सहकारी हरेक वर्ष नाफा में गई रहलक उहर से बचतकर्ता के आकर्षण व विश्वास बढ़लक उहर से आपन सहकारी में तरलता देख गिलक बटुलबाट। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के सहप्राध्यापक डाक्टर केशर कुंवरफे देश में लगानी करना वातावरण निडेगिला को व्यवसाय करना चहुया हुक्रफे सुरक्षा असुरक्षा महसूस करती रलक बटुलबाट। कैलाशेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के आज संघर्ष समिति के भेला हुई बा विगत लम्बा समय थे से विवाद में रहलक सामुदायिक वन के निकास देहक लागी गठित संघर्ष समिति के निकास डेयक लागी संघर्ष समिति के गठन हुई रह उपभोक्ता के लम्मा पर्खाई पाछ आज उपभोक्ता भेला बलागिलक हो भेला में अलग विभिन्न ओडा के बरघर तथा उपभोक्ता हुक्र सामुदायिक वनोप निकास के लागी आपन आपन राय सुझाव देलबाट सामुदायिक वनोप निकास के लागी उपभोक्ता के माग अनुसार के काम करपना हली निकास देहपना दुर्गौली के बरघर राजेश कठायत बटुलबाट उपभोक्ता तुलबहादुर शाह गस्ती के नाव में धीर खर्च हुई बटुटी सामुदायिक वनोप निकास के लागी लौ समिति बनाईपना माग धरलबाट धर्मापुर के बरघर गुरूप्रसाद चौधरी निकास के लागी पुरान समिति हटाक लौ समिति बनाईपना आपन गांव के माग रहलक बटुलबाट भगतपुर के बरघर दिनेश चौधरी उपभोक्ता हुक्र लम्मा समय निकास के पर्खाई में बैठलक उसे वर्तमान कार्य समिति इज्जत के साथ विदा लिहेपना व लौ कार्य समिति गठन हुईपना सुझाव देलबाट धर्मापुर कटान के बरघर गगन सिंह भूल बनोक निकास केला गांव गांव से उपभोक्ता भेला करैलक उहर से आज के भेला से निकास देह बना बटुलबाट जगतपुर के बरघर जीत बहादुर शाह बनोक अध्यक्ष होक आशा कल्पाछा मन परिकर निमिलना बटुलबाट उपभोक्ता राजेश चौधरी पुराण समिति राजीनामा देहपना व लौ समिति गठन करपना माग धरलबाट जानकी गांवपालिका के निवर्तमान वडा अध्यक्ष प्रदीप कुमार शाह बनोक कार्य समिति हन समय देलक उहर से का कतरा कारणले मिलाई निषेकलक बटुटी उपभोक्ता सर्वे सरा हुईलक बटुलबाट उपभोक्ता तर्कराज देवकोटा आब चाड़ पर्व के समय ऐतिरलक उहर्से हली सामुदायिक वन के निकास देहपना बटुलबाट खोज खबरमा एक घरिक विश्राम विश्राम पाछैनीबाटी सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: आज भोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एकछु भएर हिँड्ने बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इशारा गरेर मात्र बाटो काट्ने साइकल होसिया गाड़ी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड नछोडौं र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ
2: जानकी गाउँपालिका एक नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
3: के तपाईलाई थाहा छ
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
3: हो र
4: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
3: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं
3: के छ त विकल्प
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं
3: विस्तारै गर्दा हुँदैन
4: हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
3: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
4: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली
5: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार सत्कार पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा
6: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने
5: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
6: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या
5: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
6: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
5: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
6: ईसीजी सेवा
5: डिजिटल एक्सरे सेवा
6: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
5: फोन नम्बर 9894827359 र 9848423059 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै
7: सुन्नुहोस् न यसपालि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु सिर्चना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न, त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे।
8: ए हो र, गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त?
7: हुन्छ नि, आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ, अनि विश्वासिलो सेवा पनि।
8: त्यसो भए आजै जाउँला नि।
7: ल, अरूलाई पनि भनौँ है।
8: सुनको चमक, आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
9: सिर्जना सुन चाँदी पसल, तपाईँको रोजाए हाम्रो जिम्मेवारी।
8: सिर्जना सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा, सञ्चालक रूपलाल सुनार, सम्पर्क नम्बर 98095443893।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। सुदूरपश्चिम प्रदेशके प्रमुख रेफरल केन्द्रके रूपमा रहलक सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 21 दिन थिए सिटी स्क्यान सेवा बन्द हुबेर सेवा गराही समस्यामा परलबाट। सिटी स्क्यान मेसिनके पाट पूर्जा बिग्रल पाछ सेवा अवरूद्ध हुलक अस्पताल प्रशासन जनैलबा। प्रदेशके नौठो जिल्ला से उपचारके लागि ऐना बेरहमेन सिटी स्क्यान सेवा निपाइबेर समस्या झेल्टी रहलबाट। विशेषकैका आर्थिक अवस्था कमजोर हुलक तथा विपन्न नागरिक हुक्र उपचारके प्रमुख गन्तव्य रहलक सेती अस्पतालमा सेवा बन्द हुल पाछ कतरा बेरहमेन निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिर्क सिटी स्क्यान गर बाध्य हुलबाट। अस्पतालमा दैनिक 1200 थेसे 1500 सम्म बेरहमेन विभिन्न सेवा लेना करलबाट। सिटी स्क्यान सेवा फेर अस्पतालके महत्वपूर्ण सेवा मध्ये एक हो। सेवा बन्द हुबे उपचारके लागि अस्पताल पुग्लक बेरहमेन थप आर्थिक भार व्यवहार पर्न बाध्य हुलबाट। सेती प्रादेशिक अस्पतालकी सूचना अधिकारी किशोर प्रसाद श्रेष्ठके अनुसार सीई कम्पनी से खरिद करगिलक सिटी स्क्यान मेसिनके पाट पूर्जा बिग्रल पाछ सेवा सञ्चालनमा समस्या आइलक हो। बिगरगिलक पाट नेपालमा न उपलब्ध निहुना हुलक उहाँसे विदेश मगाई मंगाई पर्लक उहाँ बटुलबाट। बिगरगिलक पाठ विदेश से लान पर्ना हुलक उहाँसे कुछ समय लगलक हो। आ पाठ अब काठमाडौँसम्म आपुगलबा। आप एक साता भित्र मेसिन तयार होक सिटी स्क्यान सेवा पुनः सञ्चालनमा आई सूचना अधिकारी श्रेष्ठ कल। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा न सिटी स्क्यान सेवा 2079 साल पुष ठेसे सञ्चालनमा अहिलक हो। अस्पतालके अनुसार दैनिक करिब 20 जना बिरामीन सिटी स्क्यान सेवा लेटिआइलबाट। सेवा बन्द हुइलपाछ अस्पतालमा उपचारके लागि अहिलक बिरामीन स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुइनि सेकलक गुनासो कर्लबाट। हुक्र अस्पतालमा घरिघरि ती अहिलक समस्या तत्काल समाधान करपना माग्फे कर्लबाट। राजनीतिक नेतृत्व से अस्पताल के निरीक्षण हुइना कर्लसेफे समस्या समाधान और निर्णय के कार्यान्वयन में अपेक्षित प्रगति हुइनी सेकलक सेवा ग्राही के गुनासो रहलबा। कैलालीके गौरीगंगा नगरपालिका 6 मोइया स्थित भैरव आधारभूत विद्यालयमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत कलक आरोप मन 3 जना शिक्षक पक्राउ परलबाट। दलित समुदायके विद्यार्थी तथा अभिभावक देलक उजुरीके आधारमा शिक्षक भगवती बडेला, भगवती रेग्मी ओ टेकराज उपाध्याय पक्राउ परलक। फिट पक्राउ परलक टिन्यो शिक्षक हन इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीमा धैक घटनाके सम्बन्धमा न अनुसन्धान हुइतिरलक इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीके प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक हीरा सिंह महरा जानकारी देलाबाट। हुकहनके उपर विद्यालयमा न दलित समुदायके विद्यार्थी तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिके अध्यक्ष, शिक्षिका ओ कार्यालय सहयोगी उप जातीय आधारमा न विभेदपूर्ण व्यवहार कलक आरोप लगागिल्बा। विद्यालय व्यवस्थापन समितिकै अध्यक्ष चक्र बहादुर विक, शिक्षिका बिना विक, कार्यालय सहयोगी लक्ष्मी देवी दमाई तथा दलित विद्यार्थी उपर जातीय विभेद करगिलक विद्यालय समितिकै सदस्य कैलाश आउजी बटुलबाट। घटनाबारे जानकारी सार्वजनिक हुइलपाछ स्थानीयवासी, विद्यार्थीकै अभिभावक तथा विभिन्न सरोकारवाला विद्यालयमा हुइलक जातीय विभेदकै निष्पक्ष छानबिनकै सत्य तथ्य सार्वजनिक गर माग कर्लबाट। नेपालकी संविधान जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत हुन निषेध गर्लबा। खोज खबरमा फेरफेर विश्राम, विश्राम पाछैनीबाटी सुन्तिरै सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
10: घर त जेनतेन लगाइयो, अब झ्यालढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला? काठ पनि सुन जस्तो महँगो, के गर्ने के नगर्ने?
11: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ? काठभन्दा सस्तो, देखिनामा पनि राम्रो अल्मुनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
10: ए हो त, कहाँ पाइरहेछ दिदी अल्मुनियमको झ्याल ढोका?
11: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन अल्मुनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
10: अब त म ढुक्क।
1: मिलन अल्मुनियम एन्ड ग्लास हाउस, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर मोहनराज भाट।
11: मोबाइल नम्बर 9848513426। जमरापारी, टिकापुर, कैलाली।
12: नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग, मानसिक नशा एवं लागू औषध कन्सल्टेन्ट न्युरो साइकोट्रिक डाक्टर आइनोडिन बागवान।
13: यही असोज 17 गते तेस्रो शनिबारका दिन
14: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग, मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
12: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने, बढी रिसाउने, झिजो मान्ने, बरबराउने, अमिलो व्यवहार गर्ने, कामकाजमा मन लगाउने, एक्लै बसेर टुलाउने, भोक नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, धेरै रक्सी खाने, लागु पदार्थ सेवन गर्ने,
14: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने, स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी, छारे रोग, मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या, नकारात्मक सोचाइ आउने, यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला।
13: डाक्टर आउने दिन यही असोज 17 गते तेस्रो शनिबार।
15: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म। बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक, अस्पताल रोड, टिकापुर। टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नेछ। याद गर्नुहोस्, आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 9868080008 र 9825637772।
16: टिकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको धारा जनानका लागि आवेदन दिने बारेको सूचना। टिकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था र टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 स्थित रामपुर खानेपानी एक आपसमा मर्ज भई खानेपानी सेवा विस्तारका लागि सम्झौता भइसकेको हुँदा वाडा नम्बर 3 का उपभोक्ता ज्यूहरूलाई विशेष सहुलियतमा धारा जडान गर्ने योजना रहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। उक्त सहुलियत कार्यक्रममा सहभागी हुन मिति 2083 असोज 1 गतेदेखि पुष 1 गतेसम्म संस्थाको कार्यालयमा धारा जडानका लागि आवेदन दिन हुन अनुरोध छ। याद राख्नुहोला, पुष 1 गतेपछि सहुलियत कार्यक्रम लागू हुने छैन। थप जानकारीका लागि संस्थाको कार्यालयको सम्पर्क नम्बर 0915614549 सम्पर्क गर्नुहोला। टिकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर आनन्द बहादुर चन्द सहित दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय गेटामा यह शैक्षिक सत्र थेसे एमबीबीएस लगायतके स्वास्थ्य विज्ञानके कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तयारी हुइतिरलग बेला पूर्वाधार, जनशक्ति ओ शैक्षिक तयारीके अवस्था पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर आग्रह कर्लबाट। शिक्षा चिकित्सा आयोगको निरीक्षण पाछ विश्वविद्यालयमा आवश्यक प्राध्यापक, शिक्षण अस्पताल, क्लिनिकल अभ्यास, प्रयोगशाला तथा अन्य शैक्षिक पूर्वाधारकै विषयमा प्रश्न तथा टिप्पणी उत्तीरलक बटुटी सांसद चन्द ऊ विषयकै विरोधमा विरोधकै रूपमा निहोक सुधारकै अवसरकै रूपमा लेहपना बटुलबाट। वहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन प्रत्येक विभागमा आवश्यक नियुक्त ओ कार्यरत जनशक्तिकै विवरण सार्वजनिक गरपना बटुलबाट। वस्तक शिक्षण अस्पतालमा उपलब्ध विशेषज्ञ सेवा, बिरामीनकी संख्या, विद्यार्थी प्राप्त गर्न वास्तविक क्लिनिकल अभ्यास, आधारभूत विज्ञान प्रयोगशाला, उपकरण, पुस्तकालय, सिप प्रयोगशाला, छात्रावास तथा अनुसन्धान पूर्वाधारकै अवस्था समेत सार्वजनिक गर्न करपना उहाँ सुझाव देलबाट। अन्य अस्पताल से सहकार्य करगिल फुलसेफे वाकर कानूनी तथा शैक्षिक स्वरूप स्पष्ट पार ओ हाल सञ्चालनमा रहलक अस्पताल पूर्ण क्षमताकी शिक्षण अस्पतालकी रूपमा विस्तार गर्न निश्चित समय सीमा सार्वजनिक गर समेत उहाँ आग्रह गर्नबाट। सांसद चन्द

0: अवस्थामा रहलक संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी फाइल तत्काल निकास दिए सरकारके ध्यान आकर्षण करैलाबाट बिहिबार बैठक प्रतिनिधि सभाके बैठकमा बोल्टी उहाँ मन्त्रालय ढैटी फे न्यायके फाइल गति लिए निषेकलक आक्रोश व्यक्त कलबाट ए समाचार के संग खोज खबर ओराइल अन्तिममा जैती जैती खबर के मुख्य शीर्षक फेर्से सहकारीमा बजेट थुप्रल तर लगानी निहो कैलाशेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के आज संघर्ष समिति के भेला हाली निष्कर्ष दिहेपना उपभोक्ता के माग सेतीमा तीन साता थेसे सीटी स्क्यान बन्द समस्यामा बेरम्यन कैलालीमा विद्यालयमा जाति विभेद कलक आरोपमा तीनजना शिक्षक पक्राउ लित आवकला थारू भाषा खोज खबर अत्रह और सामाता 6 बजे नेपाली भाषामा खोज खबर सुन सिक्दी आवक खोज खबर से प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद दिती मै गीता फी विदाई टू सामुदायिक रेडियो टीका पर एफएम सुनतिर बी राम राम
1: पढाई छुट्यो साथी छुटे सबै छु।

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जै बो पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान वर्जन हो का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना पट्ट फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो होना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
3: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436
4: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला टेन्सनमा भए म त अब
0: भाइलाई थाहै रहेनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रेक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
4: ए यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
0: कहाँ हुनु भाइ टिकापुर जमरा पारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
5: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
4: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
6: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्र्याक्टर बस ट्रक टिफर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
0: सम्पर्क नम्बर 0915604670 र मोबाइल नम्बर 9848518828

0: बाबु ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
2: कामदार आवश्यकता संबंधी सूचना
4: काठमाडौं स्थित घरेलू कामदार का लागि एकजना पुरुष र एकजना महिला तथा सिन्धुपाल्चोक का लागि एकजना कामदार तत्काल आवश्यक परेको हुँदा इच्छुक तथा योग्य व्यक्तिहरूले सम्पर्क गर्नुहोला
2: कार्यस्थल काठमाडौं तथा सिन्धुपाल्चोक आवश्यक संख्या पुरुष एकजना महिला एकजना तथा अन्य एकजना सम्पर्क फोन नम्बर 9551400725 इच्छुक व्यक्तिहरूले समयमै सम्पर्क गर्नुहोला
0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला टेन्सन मा भए म त अब
5: भाइलाई थाहै रहेनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टर मा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
0: ए यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
5: कहाँ हुनु भाइ टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
6: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपट मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
7: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्र्याक्टर बस ट्रक टिपर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
5: सम्पर्क नम्बर 0915604670 र मोबाइल नम्बर 9848518228

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिर जैबो पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ रा घूम जाए ता था पाए
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।

0: बुका तिर कबु पेन्सिल कबु झलै फटाका आजिठ का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनला से लड़का सामान निहरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बर बर
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई ठो कबू पेंसिल हेरा कई ठो कबू झोले फटा कई ठो बढ़िया ठो से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गया झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल हेरा थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर थी
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: पर्स हराएको सूचना टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 ब्लक नम्बर 14 बस्ने जितेन्द्र रावलको असोज 12 गते साँझ 6 बजेदेखि 8 बजेभित्र हुलाकी राजमार्ग हुँदै लम्की खकरौला मेन रोडबाट धनगढ़ीदेखि टीकापुर आउने क्रममा फुलबारीदेखि टीकापुर ब्लक नम्बर 14 घर पुग्दासम्म पर्स सहित पर्समा भएको नेपाली र भारतीय सवारी चालक अनुमति पत्र कृषि विकास बैंकको एटीएम कार्ड र 1090 रुपियाँ सहित गोल्डेन कलरको पर्स हराएकोले भेटाउनु हुने महानुभावहरूले मोबाइल नम्बर 98126552 97039440350 खबर गरिदिनु हुन वा नजिकैको प्रहरी कार्यालय वा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएममा खबर गरिदिनु हुन अनुरोध छ। साथै पर्स भेटाएर दिने व्यक्तिलाई पर्समा भएको पैसा र अन्य पुरस्कार पनि प्रदान गरिनेछ।

0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमंत स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चौक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमे उनका संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फैले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: टीकापुर नगरपालिकाको सूचना। टीकापुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन 2078 बमोजिम कर तिरी नगरको विकास निर्माणमा सहभागी बनौ। नगरपालिका कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर चुक्ता नगरे नगरपालिकाबाट प्रवाह गरिने कुनै पनि सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन नगरपालिका कार्यालय बाध्य हुने छैन। कर तिर्नु सबै नगरवासीको कर्तव्य हो भने सेवा प्राप्त गर्नु अधिकार हो। त्यसैले कर तिरौ सभ्य र जिम्मेवारी नागरिकको परिचय दिऊ। समयमै कर तिरौ जरिवानाबाट बचौ। कर सम्बन्धी विस्तृत जानकारीका लागि टीकापुर नगरपालिकाको कार्यालय राजस्व उपशाखाको फोन नम्बर 091-560-883 सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध छ।
2: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलाली।

0: अरेला सुन चाँदी पसलमा छड्के तिलहरी माइली तिलहरी रानी हार हार मंगलसूत्र चपकी पेन्डल बाला औठी चन्द्रमा काँटा नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइनका गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपथ मूल्यमा बनाइन्छन्। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
1: अरेला सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक टिकापुर एलएन मेडिकल अगाडि संचालक खुमराज सुनार। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9810625347।

जिरापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार और बिहीबार बिरामी जांच कर आने भाई छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामी विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।